0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం ఇప్పుడు సమయం 6 గంటలు కావస్తోంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో హిందీలో అనంతరం ఆంగ్లంలో వార్తలు వింటారు. ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలీ అవుతుంది.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కి సాథ్ మే వైష్ణవి. विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है. भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है. भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है. विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे. भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच करने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है. साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके लिए नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं. भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे. रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे. डॉ काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे. भाजपा सांसद राधामोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे. भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरि उल्लाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे. भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है. इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है. प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की. उन्होंने श्री स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया. नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छर के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी. शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है. उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे. इन केंद्रों में इन भाषाओं पर उच्च स्तर का शोध किया जाएगा. साथ ही इनके साहित्य और भाषाई विरासत को सुरक्षित रखने और डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने पर भी कार्य किया जाएगा. ये उत्कृष्टता केंद्र असम के तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे के स्नातकोत्तर डेक्कन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे. पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है. इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2,100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा. शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. सरकार नवद्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत विकसित करने की भी योजना बना रही है. अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में कॉफी की खेती का विस्तार करने, उत्पादकता और कॉफी बीन्स की गुणवत्ता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है. मुख्यमंत्री ने कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया और राज्य के कृषि विभाग द्वारा आयोजित हिल्स टू कप कॉफी कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार कार्यशाला में दिए गए सुझावों पर आगे कार्रवाई करेगी और कॉफी उत्पादकों को हर संभव सहायता देगी. एशिया खेल आज भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होंगे. समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा. भारतीय समय के अनुसार ये कार्यक्रम शाम 6 बजे

0: ही झा हा अथ वार्ताः। भोपालनगरे समनुष्ठिते राज्यस्तरीय गोपालक सम्मेलने जनान् सम्बोधयन् केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः प्रावोचत् यत् भारतीय न्यायसंहितायाः निरवशेष प्रवर्तने सति भारतस्य दण्ड न्यायप्रणाली जगति निरतिशय अर्वाचीना सम्भविष्यति। गृहमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् अस्याः न्यायसंहितायाः पूर्णसञ्चारानन्तरं अभियोग पञ्जीकरणादारभ्य सर्वोच्च न्यायाधिकरणं यावत् सर्वेषां न्यायव्यवहाराणाम् अन्तिमनिर्णयः वर्षत्रयाभ्यन्तरे एव सिद्धिमेष्यति। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालयान्तर्गत उच्च शिक्षा विभागेन असमिया, बंगला, मराठी, पाली, प्राकृत इति पञ्च शास्त्रीय भाषाणाम् अध्ययनाय पञ्च उत्कृष्ट केन्द्राणि अङ्गीकृतानि। एतेन उपक्रमेण एतासां शास्त्रीयभाषाणां भाषिक साहित्यिक न्यासस्य संरक्षणाय, सङ्गणकीयकरणाय, उच्चशैक्षणिक अनुसन्धानाय, ज्ञानस्य च व्यापक प्रचाराय समर्पित संस्थागत सहयोगः लप्स्यते। एकोनविंशतितमः प्रवासी भारतीय दिवस समारोहः आगामि वर्षस्य जनवरी मासस्य सप्तमदिनांकात् नवमदिनांकं यावत् पश्चिमबंगराज्यस्य कोलकातानगरे समायोजयिष्यते। अस्य महाधिवेशनस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी विधास्यति। तत्र हि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापनसत्रे अध्यक्षतां वहन्ति, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारान् प्रदास्यति। सम्प्रति एषः कार्यक्रमः आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: विशदवृत्तान्ताय एक्स् माध्यमे @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। यूट्यूब् मञ्चे च न्यूज़ आन् AIR ऑफिशियल वाहिन्याः अनुग्राहकाः भवन्तु।
0: लोकसभाध्यक्षेण ओम बिरला इत्यनेन मन्त्रालयानुगुणं विभिन्नानां संसदीय समितीनां पुनर्निर्माणं विहितम्। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब वित्त समित्या, कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश कार्य समित्या, सुधीर गुप्ता च रेल समित्या अध्यक्षत्वेन नियुक्ता। तथैव चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन खाद्य प्रसंस्करण समित्या, राधामोहन सिंह रक्षा समित्या, राजीव प्रताप रूडी जल संसाधन समित्या, सप्तगिरी उल्का ग्रामीण विकास पंचायती राज समित्या, निशिकांत दुबे च संचार सूचना प्रौद्योगिकी समित्या अध्यक्ष पदम अलंकरिष्यन्ति। अद्य नवदेहल्यां पंचम कौटिल्य आर्थिक सम्मेलनं संबोधयन्ती वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन न्यगादीत् यत् गत दशके वित्तीय संयमस्य आधारभूत संरचना निवेशस्य, बैंकिंग परिष्काराणां, वस्तु सेवा करस्य अथ श्रम संहितानां सुदृढ क्रियान्वयनेन भारतस्य आर्थिक स्थैर्यं अतीव सुदृढम् अभवत्। वित्तमंत्री अब्रवीत् यत् विगत चतुर्षु वर्षेषु वैश्विक संकटेषु सत्सु अपि भारतस्य आर्थिक मूल तत्त्वानि सर्वथा अक्षुण्णानि सन्ति। इस्राइल प्रधानमन्त्रिणा बेंजामिन नेतन्याहू वर्येण आगामी स्वातन्त्र्य महोत्सवे मंगलदीप प्रज्वालयितुं भारतीय वैमानिकः कैप्टन स्मिथ मच्छारः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च सगौरवम् आहूतौ। दूरवाणी संभाषण वेलायां नेतन्याहू महोदयेन कैप्टन मच्छारस्य वीरतायाः भूरिशः प्रशंसा विहिता। स च भारत इज़राइल देशयोः धीरनायकत्वेन उद्घोषितः। परंपरागत रूपेण एतत् मंगल ज्वाला प्रज्वालनस्य गौरवं केवलं इज़राइल नागरिकेभ्यः एव आरक्षितं भवति, येन एतत् आमन्त्रणम् अतीव दुर्लभं विशिष्टं च मन्यते। जापान देशस्य नागोया नगरस्य क्रीडांगणे अद्य सायंकाले षड्वादने आईची नागोया एशियाई क्रीडायाः भव्यं समापनं भविष्यति इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी सिद्धिपेट जिल्ला समग्र निवेदिक विंटारू। निवेदिक नंदिस्तारू श्रीपी रमेश।

0: और जापान के नागोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह, भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी ध्वजवाहक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। इन 5 केंद्रों की स्थापना भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन, अनुसंधान और संरक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाड़ की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच कराने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी।
4: प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में युवा प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन होगा। इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल के युवा, कारोबारी, पेशेवर, शिक्षाविद और नवाचार से जुड़े लोग शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस का यह 19वां संस्करण दुनिया भर में रह रहे भारतीय समुदाय के भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित होगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कैप्टन स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। ये सम्मान इसीलिए खास है क्योंकि इसराइल में स्वतंत्रता दिवस पर ज्योति जलाने का सम्मान आमतौर पर केवल इसराइल नागरिकों को दिया जाता है। कैप्टन स्मिथ का इस समय अबू धाबी में उपचार चल रहा है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर

लेंडो ने भी भारतीय पैलेट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पैलेट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: पोर्ट आज यात्रियों और कार्गो के लिए एक बड़ा हब बन गया है जो टेक सिटी बेंगलुरु को भारत और दुनिया भर की जगहों से जोड़ता है। 2025-26 के दौरान यहां 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें अकेले इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या में लगभग 24% की बढ़ोतरी हुई। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस एयरपोर्ट में लगभग 2.8 लाख विमानों का आना जाना भी दर्ज किया गया। पिछले साल यहाँ 5 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा कार्गो को संभाला, जिससे कारोबार भारत और विदेशों के बड़े बाजारों से जुड़े। मॉडर्न चेक इन, डिजी यात्रा और बैगेज सुविधाएं, फ्लाइट की जानकारी देने वाले डिस्प्ले, लॉन्च और शानदार इंटीरियर की वजह से सोशल मीडिया पर इसकी काफी तारीफ हुई है। T2 का टर्मिनल इन द गार्डन कॉन्सेप्ट, जिसमें हरी दीवारें, छत से लगे बागान, सुंदर लैंडस्केप और सूरज की स्वाभाविक रोशनी को फिल्टर करने वाले इंजीनियर बांस का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको याद दिलाता है कि बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यह एयरपोर्ट यात्रियों की सुविधाओं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अनोखे आर्किटेक्चर और कड़ी सुरक्षा का बेहतरीन मेल है। साथ ही यह उस शहर की पहचान को भी दिखाता है जिसकी ये सेवा करता है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नव द्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रिजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मतदान मंगलवार 6 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार हसी रानी रथ के समर्थन में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। स्पष्ट और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियन ने कहा है कि अमेरिका के बढ़ते आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान ने नई व्यवस्था अपनाई है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति पजिशकियन ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा रहा है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्धविराम के लिए भारत के प्रस्ताव को 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिवेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्धविराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले जारी रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ने कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों से आम लोगों को विस्थापित करने के उद्देश्य से हवाई हमले तेज करने की नई नीति अपनाई है। श्री जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चला है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्दियों से पहले नागरिक ठिकानों पर हमलों का दायरा बढ़ाने वाली नई सैन्य नीति को मंजूरी दी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी शेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो की याद में आयोजित की जा रही है। श्री शेखो ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। और अब जापान में आज होने वाले एशियाई खेलों के समापन समारोह की जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं आज जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होने वाले भव्य एशियाई खेलों के समापन समारोह के साथ। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज नीरू होंगी। वो तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए क्रिकेट की, तो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारत को कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तो फरहत, ये थे अब तक के कुछ खेल समाचार।
1: मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, तमिलनाडु,

0: पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले दो दिन में बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहत। 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, गोल्डन फाइव के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर जीता स्वर्ण। पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर कटाया ओलंपिक टिकट। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, स्वर्णिम उछाल, क्रिकेट से लेकर हॉकी में गोल्ड मेडल। हिंदुस्तान ने उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन के आर्थिक सम्मेलन में संबोधन का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी। उपराष्ट्रपति ने कहा, समावेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अमर उजाला ने युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति शीर्षक से लड़ाकू विमानों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, तेजस, राफेल और F-35 ने एक साथ भरी उड़ान। बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी मिल सकती है छुट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निजी क्षेत्र के पुरुष कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव देने समेत 37 सिफारिशें दी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, स्क्रीन का घातक नशा, भारतीय रोजाना गवा रहे 141 करोड़ घंटे। भारत में 66 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे, राजस्थान पत्रिका में है। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में दिखेगी राम राज्य की झलक। पंडाल में भगवान राम और हनुमान की होगी मूर्तियां, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने राजस्थान में हाड़ोती के प्रसिद्ध डोल मेले की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, झिलमिल रोशनी, झूलों की रफ्तार, डोल मेले में उमड़ रहा हाड़ोती।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया, नए अध्यक्ष की नियुक्ति। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का विरोध किया, पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Lok Sabha Speaker Om Birla reconstitutes several department-related parliamentary committees for 2026-27 term. Union Education Ministry approves 5 new centres of excellence for studies in classical languages, Assamese, Bengali, Marathi, Pali and Prakrit. India summons Pak envoy to register strong protest over continued facilitation of illegal cross-border infiltration from Pakistan. 19th Pravasi Bharatiya Divas convention to be held from the 7th to 9th of January next year in Kolkata. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu describes Indian pilot Smith Macher, hero of Israel, India and entire world, invites him and Prime Minister Narendra Modi to Israel's Independence Day ceremony. And Asian Games 2026 to conclude today at Nagoya in Japan, trap shooter Neeru Dhanda to be India's flag bearer for the closing ceremony. And now the news in detail. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bharthru Hari Mehtab has been appointed as the chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from Lok Sabha and 10 members from the Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as chairperson of the Committee on External Affairs. It includes 21 members from the lower house and 10 from the upper house, while the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta.

0: ఆకాశవాణి సమయం మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు వస్తుంది. కొద్ది క్షణాల్లో ముందుగా హిందీలోను ఆ తర్వాత ఆంగ్లంలోనూ వార్తలు ప్రసారమవుతాయి. ఢిల్లీ నుండి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కి సాత్ మే ముకేష్ కుమార్. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन कर नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं. हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हो गया.
2: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे. रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे. डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे. भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे. इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 20 तारीख से लागू हुआ है. अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा.
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये केंद्र असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत भाषा के विशेष अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे.
3: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे. यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी. सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है. विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी. भारत ने पाकिस्तान से जारी घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है. भारत ने पंजाब की फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया. विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 घुसपैठिए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे. कई बार वापस लौटने की चेतावनी देने के बाद सीमा सुरक्षा बल को कार्रवाई करनी पड़ी. विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है. यूक्रेन के रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत का प्रस्ताव सबसे व्यापक बताया है. यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिब्याहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है. ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के एक दिन बाद आया है. श्री पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं. अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छर के अदम्य साहस की सराहना की है. श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने एक भयावह घटना होने से बचा ली. अमेरिका में भारतीय दूतावास ने वर्जीनिया के ग्रेवली पॉइंट पार्क में विकसित भारत एकता दौड़ का आयोजन किया. इसमें भारतीय मूल के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया. कार्यक्रम के दौरान योग और ध्यान का भी आयोजन किया गया. वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी सैकड़ों इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया. यह मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सैकड़ों की याद में आयोजित की गई. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है. उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाया और आजादी की भावना जगाई. श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने ओजस्वी भाषणों और प्रेरणा

मीडियम वेव 406.5 मीटर्स अर्थात 738 किलो हर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये हैदराबाद केंद्र है। आकाशवाणी हैदराबाद के इस हिंदी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, हर वर्ष 4 से 10 अक्टूबर तक पूरा विश्व वर्ल्ड स्पेस डे के रूप में मनाता है। ये सप्ताह अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक की उपलब्धियों, मानव जीवन में उनके योगदान और भविष्य की अंतरिक्ष संभावनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर देता है। इसी अवसर पर आज हम भारत की बढ़ती अंतरिक्ष यात्रा और विश्व के अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की भूमिका पर विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ है बी शांति श्री जी, जो 31 अगस्त 2026 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो संस्था के ग्रुप हेड सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट एवोल्यूशन ग्रुप के पद से सेवानिवृत्त हुई है और उनसे बातचीत करने वाले हैं जयदीप। तो आइए उनसे जानते हैं भारत की अंतरिक्ष यात्रा, गगनयान, स्पेस टेक्नोलॉजी और भविष्य में युवा वैज्ञानिकों की भूमिका के बारे में। सुनते हैं ये विशेष साक्षात्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ विश्व में भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है, भारत की अंतरिक्ष नेतृत्व की ओर बढ़ती यात्रा। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता से लेकर गगनयान अभियान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग तक भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहा है। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं श्रीमती शांति श्री जी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो से सेवानिवृत्त हुई है। शांति श्री जी ने 31 अगस्त 2026 को इसरो से सेवानिवृत्त ली है। सेवानिवृत्ति से पूर्व वे सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट एवोल्यूशन ग्रुप की ग्रुप हेड के पद पर कार्यरत थी। शांति श्री जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
1: धन्यवाद जयदीप जी। पहले आकाशवाणी टीम को और श्रोताओं को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के अवसर पर मेरे हार्दिक शुभकामनाएं।
0: शांति जी, हमारा पहला प्रश्न, आज विश्व के अंतरिक्ष समुदाय में भारत की स्थिति को आप किस रूप में देखती है?
1: वैश्विक अंतरिक्ष परिदृश्य में भारत का स्थान एक प्रमुख और अग्रणी अंतरिक्ष शक्ति का है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन माने इसरो अपनी उपलब्धियों और सटीक तकनीक के दम पर दुनिया के शीर्ष में 5वां या 6वां अंतरिक्ष संगठन में अपनी जगह बनाई रखी है।
0: जी
1: तो प्रतिबद्धियां उपलब्धियां अगर आगे जाके देखें तो उनके पायनियरिंग मिशन्स जो है लाइक चंद्रयान 3, आप
0: जी
1: बता चुके हैं चंद्रयान 3 है हमारा जो दक्षिणी ध्रुव पे हम पहले बार लॉन्च किए
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: रोवर लॉन्च किए हैं और कोई अभी तक तो नहीं किए दक्षिण ध्रुव पे। और दूसरी ये है कि पायनियरिंग मिशन आदित्य L1 है, लैग्रेंज पॉइंट पे हम तैनात कर चुके हैं और सौर शक्ति को सौर ऊर्जा को निगरानी कर रहे हैं।
0: जी
1: और तीसरा ये है कि SpaceX है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण मिशन है, दो उपग्रह को अंतरिक्ष में रख के जुड़ाना,
0: जी जी
1: जुड़ाने के बाद उनसे कम्युनिकेशन करना, जारी रखना और ट्रांसफर करना मटेरियल्स, वो पूरा होता है। ये
0: जी
1: तीन उपलब्धियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
0: जी
1: इसके आगे अगर देखें तो हम वैश्विक रूप में कमर्शियल लॉन्चेस भी किए हुए हैं।
0: जी
1: अभी तक तो हम तो लगभग 400 उपग्रहों का, विदेशी उपग्रह का प्रक्षेपण किए हुए हैं। और आगे देखें तो हम एक ही साथ 100 से ज्यादा उपग्रह एक ही बार एक ही लॉन्च व्हीकल पे किए हैं।
0: जी
1: ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्ध है।
0: जी बिल्कुल
1: और ये उपलब्धियों के आगे और भी हमारा भारत सरकार ने 2020 साल में भारत सरकार ने एक नया अंतरिक्ष नीति लेकर आया है, जिसमें हमारा नीति इंडस्ट्रीज जो है प्राइवेट इंडस्ट्रीज उनके बहुत बढ़ावा

0: दिया गया है
1: जी
0: एंड बहुत ही उनके लिए सुविधाएं दिए गए हैं,
1: जी
0: उनसे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। और तीसरा और एक भी देखे तो हमको सहयोगिता अंतरिक्ष अनुसंधान दूसरे विश्व के दूसरे अनुसंधान से संगठन से भी हमको सहयोगिता मिल रहा है, हम
1: जी
0: भी सहयोगिता कर रहे हैं। अभी देखे तो 300 से ज्यादा साझेदारियां हैं हमारे
1: जी जी
0: पास। और लास्ट में हम देखे तो हमारा महत्वाकांक्षी लक्ष्य जो है सो गगनयान है, आगे जाके करना है, और शुक्रयान है, और हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है।
1: जी
0: ये चार पांच पॉइंट्स देखे तो इसके दम पर हम भारत को पांचवा जगह दे सकते हैं विश्व
1: जी
0: के स्थान पर। हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है अंतरिक्ष विज्ञान के जनक माने जाते
1: जी
0: हैं, उनकी महत्वाकांक्षा एक रही सेकंड टू नन। सो माने तो हम सर्वोत्तम रहना है,
1: जी जी
0: ऐसा ले सकते हैं कि हम किसी से कम नहीं। सो वो उत्साह उन्होंने दे रहे थे, वो उत्साह को आगे लेके हम, आपको पता है, सबको पता है कि हमारा भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम 1963-64 में शुरुआत हुआ,
1: जी बिल्कुल
0: तब तक कि हमारा अमेरिका और रूस चाइना बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। सो नाइन स्पुतनिक चले गया और अपोलो मिशन भी
1: जी
0: शुरुआत हो गया, हम तो थोड़ा लेट शुरू हुए,
1: जी
0: बट
1: बिल्कुल
0: नो अभी तक 2025 तक अभी हम बहुत सारी उपलब्धियां पाई है और हमारा जगह बन चुके हैं, पांचवा जगह तक आ सकते हैं।
1: जी बिल्कुल और देखा जाए तो एकदम बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण आपने हमारे साथ रखा है, अर्थात भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को मजबूत बनाने के साथ साथ विश्व के अंतरिक्ष समुदाय में भी अपनी महत्वपूर्ण स्थिति को और स्थान को बनाए रखा है। शांति जी, हमारा दूसरा सवाल। चंद्रयान 3 के ऐतिहासिक सफलता के बाद भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की अगली प्रमुख प्राथमिकताएं क्या है?
0: चंद्रयान 3 हमारा एक महत्वपूर्ण और सफलतापूर्वक योगदान दिया है स्पेस टेक्नोलॉजी में।
1: जी
0: अभी आगे जाके हमारा महत्वाकांक्षी ये होना है कि उससे और जटिल हो, और क्षमता हो,
1: जी बिल्कुल
0: और रिकॉर्ड बन पाए हम। सो इसके लिए चंद्रयान 4 जो आ रहा है वो और भी जटिल है,
1: जी
0: वो उसके चंद्रमा से हम सैंपल्स लेके आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी एक विशेष रूप से ये पूरा उपलब्धियां जो है सटीक तकनीक्स जो ही है, जो हमारा भारत के अंतर्गत ही अंडर मेक इन इंडिया
1: जी
0: वो उपयोग योगदान कर पाएंगे, वो एक है। और शुक्रयान भी आ रहा है,
1: जी
0: शुक्रयान के हिसाब से हम हमारा अन्वेषणा पहली बार जा रहे हैं शुक्रयान के
1: जी
0: तरफ,
1: हाँ
0: सो शुक्रयान एक है। और गगनयान को लेके, गगनयान हम अगले साल में हम प्रक्षेपण कर रहे हैं, इसका जो मॉड्यूल है मानव युक्त है। अभी जो पहले बार जो जा रहा है अगले साल में वो मानव युक्त नहीं है, बट मानव क्वालिफाइड रहता है, ह्यूमन रेट स्पेसिंग
1: जी जी
0: बोलते हैं
1: जी
0: उसको, सो वो क्वालिफाई रहता है।
1: जी
0: बट नो हमारा तीसरे चरण जो है उसमें, तीसरे चरण में हम मानव युक्त गगनयान को प्रक्षेपण करेंगे। गगनयान का जो है इसको बिजाना वो प्रक्षेपण करना ही नहीं है,
1: जी
0: उसको और आगे हमारा 3-4 चुनौतियां हैं।
1: जी हाँ
0: सो गगनयान में हम जो उपलब्धियां पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं उसमें से हम टीम को भिजाना है, 3-4 टीमों को। तो आप सब लोगों को पता है कि वो 3-4 हमारे वो एस्ट्रोनॉट्स जो भी है, हम तो उन व्योमनॉट्स बोलते हैं उनको इसरो के तरफ से। आप सब लोगों को पता है वो बालकृष्ण नायर जी है, कृष्णा है, अंगद भी है, और हमारा शुभम शुक्ला
1: जी जी
0: अभी पिछले साल जाके आए ISS स्टेशन पे, जो अमेरिका का है।
1: जी
0: उनका अभी एक्सपीरियंस तो हो चुका है,
1: जी हाँ
0: बट ये चारों टीम बन के उनका शिक्षण भी हो चुका है, वो लोग रेडी है, हमारा मिशन भी रेडी हो चुका है। वो अगले साल में लॉन्च होने वाला है, उसके बाद तीसरे मिशन में ये मानव युक्त मिशन होगा,
1: जी
0: उसमें से वो टीम को स्पेस में लेके जाना और उसका 400 किलोमीटर अल्टीट्यूड में उनको परिक्रम करना पड़ता है।
1: जी
0: सो 3-4 दिनों का मिशन ही है,
1: जी
0: सो
1: जी
0: वो लोग को सही सलामत हम वापस लेके आना है। सो जो हमारा लॉन्चर जो है वो समुद्रयान पे समुद्र में आएगा, सो उनको रिकवरी करना, उनको रिहेबिलिटेशन करना, ये पूरा सारे चुनौतियां हैं। ये
1: जी
0: पहली चरण है हम जो ले रहे हैं, अगर इसमें हमको सक्सेस मिले, हमारा प्रयास सक्सेस हुआ, तो हम 14वां जगह बना सकते हैं विश्व में।
1: विश्व
0: सो
1: जी
0: अभी तक तो हम अमेरिका, रूस और चाइना सक्सेस हुए, हमारा ये मिशन जो है 4th प्लेस आ जाएगा
1: जी
0: हमको।
1: बिल्कुल
0: और जो भी है इसमें और एक महत्वपूर्ण द्वार खुलेगा, इससे स्पेस टूरिज्म का आगे बढ़ सकते हैं, हमारा लॉन्ग टर्म स्टेशन हो सकता है,
1: जी
0: सब बहुत बहुत सारे आगे पीढ़ी, बहुत सारे उपलब्धि हम देख सकते हैं।
1: जी निश्चित रूप से चंद्रयान 3 भारत की अंतरिक्ष यात्रा का एक ऐतिहासिक पड़ाव रहा है, लेकिन यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आने वाले अभियान भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को भी और नए

0: आयाम प्रदान करेंगे। शांति जी, गगनयान अभियान के बारे में आपने अभी तक बहुत कुछ हमें बताया है। एक और बात, गगनयान अभियान भारत की अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है?
1: हम अभी तक जो बात कर चुके हैं गगनयान मिशन का, तो प्रॉस्पेक्ट्स क्या हो तक का, नया नया द्वार कैसा खुल जाते हैं, अभी आगे जाके देखते हैं गगनयान मिशन में क्या है, हम वो पता करना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। गगनयान मिशन में प्रक्षेपण यान एक रहता है, लॉन्च व्हीकल। वो लॉन्च व्हीकल हमारे सबको पता है, हमारा बाहुबली, इसरो का बाहुबली,
0: जी,
1: सब लोगों को पता है। सो उसको ही ह्यूमन रेटिंग सिस्टम बना के उसको गगनयान भिजाने के लिए प्रयोगशाला में टेक्निक्स और उपलब्धियां डेवलप हो रहे हैं। सो इसमें एक कक्षीय मॉड्यूल रहता है,
0: जी,
1: उसमें हमारा क्रू बैठता है। वो कक्षीय मॉड्यूल के बाद एक मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल भी बोलते हैं। एक कक्षीय मॉड्यूल जो है उसमें जो क्रू बैठता है, उसमें हम दोनों जैसा इधर बैठ के अच्छी से हवा फील कर रहे हैं, अच्छे से गुड, ऐसा मॉड्यूल, कक्षीय मॉड्यूल में भी
0: जी
1: ह्यूमन रेटिंग सिस्टम रहता है, ताकि वो एस्ट्रोनॉट्स और व्योमनॉट्स वो अच्छा रूम टेम्परेचर फील कर सकें, काम कर सकें, ऐसा कुछ है। सो उसके आगे जाके एक सर्विस मॉड्यूल रहता है।
0: जी
1: ये सब सारा कक्षीय मॉड्यूल के जो भी जरूरत है, ये पूरा सर्विस मॉड्यूल से आपको सरफरा करा जाएगा।
0: जी
1: सर्विस मॉड्यूल में जो होता है उसमें दो पावर जो है, पावर आता है उसका, इलेक्ट्रिसिटी पावर, एसी, देन जलवायु, वायु का जो भी होना है, सब तरीके का उसमें मिलते हैं। सो ये जोड़ने के बाद ये कक्षीय मॉड्यूल का पूरा स्वावलंबन मिलता है।
0: जी
1: सो इसके बाद हम एक एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, उसको, क्रू इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी कांट एफर्ट टू लूज द क्रू। सो
0: यस
1: उसके लिए बहुत सारे प्रयोग, छोटे छोटे प्रयोग कर चुके हैं हम, क्रू को सही सलामत, अगर कोई बाधा हो गतिविधि में, लॉन्च व्हीकल गतिविधि में बाधा हो, उनको सही सलामत कैसा लेके आना, उसके हिसाब से उसके बारे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर चुके।
0: जी
1: अभी
0: बिल्कुल
1: इसरो 100% कॉन्फिडेंट है उनको, अगर रॉकेट गतिविधि में और कुछ बाधा हो गया तो। बट क्रू एस्केप मॉड्यूल बोल के एक रहता है, उसके तरीके से हमारा क्रू सही सलामत वापस आ जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट
0: जी
1: एंड
0: बिल्कुल
1: क्रिटिकल है। सो वो एक टेस्टिंग हो चुका है हमारा, आप जब से पहले बताएं, हमारा चार एस्ट्रोनॉट्स जो भी है वो प्रशिक्षण लिए हैं, और रशिया में और अदर रिक्वायर्ड में, अभी भी अंडर इसरो ओनली, एंड दे आर शिक्षण ग्राह कर रहे हैं।
0: जी
1: उनका तबीयत ठीक रखना, उनका एक्सरसाइज मॉड्यूल रखना, उनको 28 तक, अभी 26 में हैं हम,
0: जी
1: 27-28 तक ये मानव युक्त गगनयान को हम इमेजिन कर रहे हैं। सो तब तक इन लोगों को ठीक ठाक रखना, उनका
0: जी
1: तबीयत देखभाल करना, उनका ट्रेनिंग जारी रखना, वो पूरा इम्पोर्टेंट होता है। और ये होने के बाद हमारा एक बार सक्सेस हो गया तो, और दूसरी ये है कि हम लॉन्ग टर्म ISS, जैसा अभी अमेरिका का ISS है, आप सब लोगों को
0: जी
1: पता है,
0: जी
1: सो जैसा वाला एक मेक इन इंडिया अंडर द प्रोग्राम, सो वो एक लॉन्ग टर्म वेयर द क्रू कैन सिट एंड डू वर्क, एंड नो इन दैट प्रोसेस अवर आगे वाले पीढ़ी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते
0: जी
1: हैं।
0: बिल्कुल
1: सो माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट, जो जो शुभम शुक्ला गए थे, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट
0: जी जी
1: करके आए
0: जी
1: हैं इसके बारे में, बट वो काफी नहीं है, वो और आगे जारी रखना है माइक्रो ग्रेविटी के बारे में, स्पेस मेडिसिन के बारे में।
0: जी
1: सो ये सब पता करने के लिए लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत है। हम ये भी डेवलप करना है कि लॉन्ग टर्म हमारे 3-4 दिनों का जो हम गगनयान पे सोच रहे हैं, सो ये 3-4 दिनों में क्रू का तबीयत तो मेंटेन करना इजी है, बट 1 साल हो का स्पेस वॉक कैसा कराना है
0: जी
1: वो पूरा प्लान करना है। वो पूरा हो गया तो अब स्पेस टूरिज्म का ओपन कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल
1: ये बहुत ही बड़ा स्टेप है, योगदान रहता है, और डेफिनेटली आई विश इसरो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, एंड आई एम प्राउड ऑफ इसरो
0: जी बिल्कुल
1: बीइंग देयर।
0: वाकई में हम सभी श्रोता हैं और सारी हिंदुस्तान पूरा बहुत ही गर्व है इसरो के साथ। और मैडम जी, ये आपने बताया था कि गगनयान तो 2028 में आने वाला है, और वैसे ही आपने जिक्र किया है चंद्रयान 4 के बारे में, वो कब तक पूरा हो सकता है?
1: चंद्रयान 4 जो है, अभी तो कुछ डेट्स है, इसरो वेबसाइट में भी आप पता कर सकते हैं, बट ना उसमें जो हम नवाचार करना है, सो उनका अनुसंधान करना है, ये पूरा क्या होता है, टाइम के हिसाब से चलते
0: जी
1: रहता
0: जी
1: है। आप पेपर में भी पढ़े होंगे आजकल कि हम वो नासा से भी थोड़ा ज्वाइंट कोलाबोरेशन,
0: जी
1: सहयोग
0: जी
1: सफलता ले रहे हैं, उनका भी ऐसा वाला साइंस मिशंस में जो होता है, अकेला हम काम कर नहीं कर सकते। सो स्पेस शटल, स्पेस मॉड्यूल, सैटेलाइट जो है हम खुद बना सकते हैं, खुद कर सकते हैं, बट उसमें जो पेलोड्स हैं वो तो वैश्विक तरीके से होते हैं, बट हमारा कभी सहयोग मिले, उनका भी योगदान हो, ऐसा कुछ सहयोगता से ऐसा वाला बड़ा बड़ा मिशन्स एडवांस

0: मिशन जो है जो चारू करते हैं। सो एक गगनयान के बाद वो पैरेलली काम तो चल रहा है, बट गगनयान के बाद उसका भी शेड्यूल आ जाएगा।
1: जी, जरूर। शांति जी, हमारा अगला सवाल, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का आम नागरिक के जीवन, कृषि, मौसम, संचार और आपदा प्रबंधन में क्या योगदान है?
0: एक अच्छा क्वेश्चन है। पहले से हमारा एक है, हमारा इसरो जो है अन्वेषण के ही नहीं है, उसने सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का, समाज कल्याण का, आम जनता को जितना भी सहायता कर सके और शासन का जितना सहायता हो सकता है उसके ऊपर भी बहुत दृष्टि रखे हैं। सो इसके हिसाब से हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो आम आदमी का बहुत ही सहायता कर सकता है। आम आदमी के रूप बोले तो हमारा जो अभी अंतरिक्ष विज्ञान जो है, अंतरिक्ष उपलब्धियां जो है, हमारे जाने बिना अदृश्य रूप से हमारे लाइफ में जुड़े हुए हैं।
1: जी जी,
0: आप एग्री कर सकते हो मेरे से, जुड़े हुए हैं, ताकि हम मोबाइल फोन कर रहे हैं, मोबाइल टेलीविजन देख रहे हैं, अभी एक प्रसार सुन रहे हैं, जो प्रसार हो रहा है सभी सैटेलाइट के माध्यम से होता है।
1: बिल्कुल।
0: सो सैटेलाइट माध्यम से होता है, सैटेलाइट माध्यम इज अंतरिक्ष का एक उपलब्धियां हैं। सो अभी हम विशेष तरीके से देखे तो आप मौसम के बारे में पूछ रहे हैं। मौसम का पूर्वानुमान करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो इससे क्या होता है, आपको पता चलता है कब चक्रवात आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कब बाढ़ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कितने जल की सुविधा है, कितने तट अंदर गया है, सो जंगल कैसा है, हमारा अर्बन कैसा क्रॉलिंग हो रहा है, सबके सब पता चलता है। सो हम कृषि विभाग से देखे सो हम फसल का क्या तबीयत है, फसल का क्या स्थिति है, वो भी पहचान कर सकते हैं। और आगे जाके देखे तो सब वर्षा आ रहे हैं, सब बादल छा रहे हैं, ये पूरा पता चलता है। इससे क्या होता है, कृषि विभाग को भी बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलता है। और एक सम 2009 से हमारा एक सैटेलाइट जो है ओशन सैट 2, अभी अभी ओशन सैट 3 भी आया है। ये छह सैटेलाइट जो है वो सैटेलाइट के तरीके से, माध्यम से हम वो मछुआरों का बहुत ही सहायता कर सकते हैं। ये सैटेलाइट जो है डेली हमारा इंडियन ओशन को निगरानी करती है। सो उसमें हमको क्या पता चलता है, समुद्र तट पे कहाँ आपको संभावना, मच्छर की संभावना है, वो पता चलता है। वो पता अभी उन्होंने 12 बजे 11 बजे अगर डेटा आंकड़े आए तो 3 बजे तक उसका विश्लेषण हो जाता है। उसके जो इन्फॉर्मेशन है, विश्लेषण जो जाता है वो आम आदमी के अंडरस्टैंडिंग पे नहीं होता है। सो वो विश्लेषण का रिजल्ट जो है उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेके इधर मछली की संभावना कल है बोल के हम मोबाइल फोन पे मिनिस्ट्री के दायरे से हम उनको भेज देते हैं। सो एक ही बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सो मछुआरों के लिए बहुत ही योगदान है। और तीसरा जाके देखे तो सीमा सुरक्षा ही बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण बात। अक्सर हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को केवल रॉकेट और उपग्रह से ही जोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में इसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में अनेक क्षेत्रों में दिखाई देता है, जैसे कि आपने कहा अदृश्य रूप में। तो शांति जी, हमारा अगला सवाल, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों और स्टार्टअप की बढ़ती भागीदारी किस प्रकार नए अवसर पैदा कर रही है?
0: बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट
1: जी। और स्टार्टअप की बात है तो हमारे युवा भी,
0: स्टार्टअप की बात है तो सबकी इंटरेस्ट है।
1: जी बिल्कुल।
0: हमारे युवा पीढ़ी को भी बहुत इंटरेस्ट होगा इसमें। हमारा भारत सरकार जो है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं 2020 में हमारा जो अंतरिक्ष नीति नियम आए हैं उसमें से हम बहुत ही द्वार खुले हुए हैं स्पेस सेक्टर्स में। पहले तो उतना स्पेस सेक्टर, स्पेस एजेंसीज में प्राइवेट सेक्टर्स, निजी इंडस्ट्रीज नहीं थे। अभी अब देखो 5-6 साल के अंदर लगभग 400 कंपनियां आ चुके हैं, स्टार्टअप्स। इसमें क्या होता है, हम बोलते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जो होता है जो रॉकेट को भेजना और सैटेलाइट को प्रक्षेपण करना, उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। डाउनस्ट्रीम जो होता है, हमारा काम सैटेलाइट को प्रक्षेपण करना से खत्म नहीं होता है, वहां से शुरू होता है। सो उसके बाद उससे डेटा कहाँ से लाए, इसका ग्राउंड सेगमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सो डेटा लाने के बाद उसका आंकड़े कैसा, कहाँ रखे, उसका वो सही सलामत का डेटा इंटीग्रिटी बोलते हैं उसको, उसका एनालिसिस कैसा करें, उसका प्रक्षेपण कैसा करें, उसका एनालिसिस कैसे, इसकी इन्फॉर्मेशन कैसा देने, किस रूप में देना है, ये पूरा बहुत ही चुनौतियां हैं इसमें। बिकॉज बढ़ते बढ़ते आगे जाते जाते लगभग हमारे इसरो इंडिया का ही अभी 30 सैटेलाइट्स हैं, 30 सैटेलाइट्स हैं। अभी आप

0: विश्व में तौर पे देखे तो बहुत सारे सैटेलाइट,
1: जी बिल्कुल
0: थाउजेंड ऐसा कुछ
1: एक्चुअली।
0: रहते हैं, रिमोट सेंसिंग है, नेविगेशन है और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स
1: जी
0: है, सब लेके बहुत स्पेस डेब्रिस भी बढ़ रहा
1: जी
0: है
1: हाँ
0: आजकल। सो ये अपॉर्चुनिटीज कम बाय रिस्क।
1: बिल्कुल।
0: सो अभी अगर रिस्क जो भी है वो आइडेंटिफाई किया, तो आप जो पूछ रहे हैं युवा पीढ़ी के लिए क्या है,
1: जी
0: युवा पीढ़ी का क्या है, स्टार्टअप्स का क्या है, जो एक ही बात है। सो हम रिस्क जो है, अब रिस्क पता चले तो अपॉर्चुनिटीज को पता कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: सो रिस्क जो है, अभी स्पेस डेब्रिस जो है जो बढ़ रहा है उसका करना है, नए नए तरीके से छोटे छोटे सैटेलाइट इंस्टॉलेशन करना
1: जी
0: है,
1: जी
0: उसका कॉस्ट रिडक्शन करना है, ये पूरा सब चुनौतियां स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं अभी। सर स्टार्टअप्स देखो, अभी हमारा विक्रम लैंड हुआ।
1: जी जी
0: विक्रम का क्या है कि वो मध्यम रॉकेट है ना, बहुत बड़ा रॉकेट तो नहीं है अभी, ये जो वो अपस्ट्रीम में है। और दूसरा जो है कि हमारा नैनो सैटेलाइट्स, माइक्रो सैटेलाइट्स में काम कर रहे हैं हमारा
1: जी
0: स्टार्टअप्स, शुरुआत हो गया। सो अभी सम स्टार्टअप्स जो कर रहे हैं डाउन स्ट्रीम में,
1: जी
0: उसका
1: बिल्कुल।
0: डेटा आंकड़े कैसा करना है, अर्बन प्लानिंग कैसा करना है, ये सब में काम करे, जियो स्पेशल डेटा यूसेज
1: जी
0: बोलते हैं उसको। हमारा वेबसाइट जो है भुवन है, बुनिधि पोर्टल है, ये पोर्टल्स ना, इसका वेदास भी है इसरो का, सब मौसम के बारे में, डेटा के बारे में, उसके नर्स के बारे में आपको जानकारी देते हैं।
1: जी
0: सो ये सभी चुनौतियां अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल बहुत ही अच्छा कहा आपने। यानी अब अंतरिक्ष क्षेत्र केवल सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं रहा है, निजी क्षेत्र और नवोदित उद्यम यानी स्टार्टअप की भागीदारी से नवाचार, अनुसंधान और नए विचारों के लिए भी एक सशक्त वातावरण तैयार हो रहा है। और समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए शांति जी, हमारे आखिरी दो सवाल। आने वाले वर्षों में भारत को वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ने में युवाओं और वैज्ञानिकों की क्या भूमिका होगी?
0: बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो मैं मानती हूँ कि भारत की अगली अंतरिक्ष क्रांति हमारे युवाओं के लिए हाथों में ही है।
1: जी
0: युवा पीढ़ी सोचना है कि हम इसरो में कैसा काम करें,
1: जी
0: हम स्पेस टेक्नोलॉजी में कैसा काम करें, ये सोचना थोड़ा चेंज करना है, अलग
1: जी
0: अलग
1: जी
0: सोचना है कि हम अंतरिक्ष संसाधनों के, उपलब्धियों के, आंकड़ों के साथ में मानव कल्याण के लिए और मानव जीवन के लिए, पृथ्वी में मानव जीवन के लिए कैसा बेहतरीन उपलब्धियां ला सकते हैं।
1: जी
0: सो अभी जितना हम प्रोग्रेस किए वो हम ले सकते हैं 30-40%, वो जो अवेलेबल डेटा है हमारे पास
1: जी
0: उसको लेके हम बहुत ही काम कर सकते हैं। आगे हमारे युवा पीढ़ी एक अच्छा अहम भूमिका निभा सकते हैं।
1: जी
0: ये चुनौतियां अभी हम डिस्कस किए हैं, चुनौतियां जो हैं उसमें से उनको ऊपर उन्हों अगर
1: जी
0: सोच, अच्छा सोच, वैज्ञानिक सोच जो मजबूत हो,
1: जी जी
0: उनका दृष्टि साफ होना, सो फोकस होना, सो अभी ये लेके असंभव को भी संभव कर सकते हैं।
1: जी
0: अभी तक
1: बिल्कुल
0: हमारा इसरो का आप देखे तो अब
1: जी
0: फिफ्टी
1: जी
0: साल से भी ज्यादा है। सो कितना प्रयास कर चुके हम, कुछ नहीं है 1963 में, अभी तो हम वैश्विक रूप में पांचवा या
1: जी बिल्कुल
0: पांचवा जगह तक पहुंच पाए हैं। हमारा गगनयान जो सक्सेस होता है तब तक हम चौथा स्थान पर चले
1: जी
0: जाएंगे।
1: बिल्कुल
0: अभी युवा पीढ़ी के ऊपर जो है हमारा विक्रम साराभाई का आकांक्षा जो है, आकांक्षा उनको आगे लेके जाके प्रथम स्थान पे उठाना,
1: जी
0: वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
1: बिल्कुल
0: और दूसरी बात यह है कि इसरो जो है, अभी जो निजी कंपनी जो है, दोनों अलग अलग नहीं है, हम साथ में साथ काम करना है, इसरो, निजी कंपनियां और शैक्षणिक क्षेत्र,
1: जी
0: तीनों मिलके पूरा उपलब्धियां जमा करना है। इसरो के पास जो एक्सपीरियंस रहता है, जो R&D किए हुए हैं उसको लेके ऑपरेशनल कर सकते हैं, तो मल्टीपल कर सकते हैं।
1: जी
0: बाद में शैक्षणिक क्षेत्र में जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं वो अभी युवा वैज्ञानिक है स्टार्टअप्स में, अभी जो एक्सपीरियंस रहे इसरो में, वेटरन साइंटिस्ट रहे, सब मिलके साथ में कुछ भी कर सकते हैं।
1: जी अभी
0: सो वो क्रांतिकारी हो सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, इधर बैठ के दोनों
1: जी
0: तो उतना तक जा सकते, बिकॉज स्कोप इज वेरी वेरी वास्ट।
1: जी
0: सो
1: बिल्कुल
0: हम पृथ्वी में बैठ के पृथ्वी के लिए क्या कर सकते सोच नहीं सकते, बट अंतरिक्ष में बैठ
1: बिल्कुल
0: के
1: बिल्कुल
0: पृथ्वी के लिए, के बर्ड्स आई व्यू,
1: जी
0: सो
1: हाँ
0: अंतरिक्ष में बैठ के क्या कर सकते हैं, अंतरिक्ष में बैठ के पृथ्वी क्या कर सकते हैं, चाहे जलवायु निगरानी हो और वायु प्रदूषण का कंट्रोल हो, वैश्विक रूप में सोच बदलना है, इंडिया के बारे में सब लोगों को सोचना है, इंडिया का सीमा सुरक्षा करना है, इंडिया का नेचुरल रिसोर्सेज जो है, पानी है, जंगल है, पेड़ है, पौधा है, सो सब सेटलमेंट्स है, वो सब हम सही सलामत रखना, उसको रखते हुए थोड़ा आगे जाके हम वैश्विक रूप में वैश्विक तरीके के ऊपर सोच करके वायु प्रदूषण को कंट्रोल करना है, वो पूरा भी हमारा जिम्मेदारी रहता है युवा पीढ़ियों. सो युवा पीढ़ियों के लिए पर्टिकुलरली वी कैन से दे कैन वर्क ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस शूट्स. अभी गगनयान के बारे में हम इतना बात कर चुके हैं, गगनयान का लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इन दी स्पेस, बोले तो उनका स्पेस सूट कैसा होना है, उसमें कम वजन का, कम वजन इज दी इम्पोर्टेंट पॉइंट इन द स्पेस. जितना वजन कम करो उतना ही आपको एक्सपोनेंशियली रहता है. सो वो पूरा सोच हमारा युवा पीढ़ी करना है. हमारा जो अभी साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक साइंटिस्ट है, उन्हें मदद करना है. सो हम सब साथ साथ में मिलके आगे जा सकते हैं और प्रथम
1: पोजीशन पर आ सकते हैं. बिल्कुल, बहुत बहुत सही कहा आपने. और आखिरी सवाल, आपका विचार दीजिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का भूमिका जो इसरो में है या अंतरिक्ष विज्ञान में किस तरह निभा रहा है?
0: सो AI आप जो पूछ रहे हैं, इसरो में सैटेलाइट्स में पहले से भी जारी है. हमको जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग दोनों साथ साथ में जमते रहते हैं, सो वो नेमिंग के पहले ही सैटेलाइट्स में हम जो प्रयोग करते हैं उसमें जुड़े हुए हैं, उसको कॉल ऑटोनोमिटी, सैटेलाइट ऑटोनोमस, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है. अभी हम लोग सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जो अभी इतना फेमस हो गए हैं, वर्ड्स पॉपुलर हो गए हैं, सो इसके पहले ही डेटा माइनिंग, डेटा इंटेलिजेंस से शुरू हुआ एक काम. इसके ऊपर डेटा एनालिसिस को थोड़ा बहुत AI के अंदर लेके आ सकते हैं. बट नो, द सैटेलाइट्स हैव दैट ऑटोनॉमस मेंटेनेंस, बिकॉज हम लोग तो अंतरिक्ष में जाना मुश्किल है. वंस वी सेंड द व्हीकल इट शुड बी लिटिल बिट ऑटोनॉमस. सो AI का भूमिका तो रहा पहले से ही. अभी जो आप पूछ रहे हैं आगे जाके AI का भूमिका क्या हो सकता है, अभी हम गगनयान के बारे में डिस्कस किए, उसमें एक व्योमनॉट के पहले हम एक रोबोट को भी भेज रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होता है. एनी प्रोसेसिंग में, विश्लेषण में बहुत ही योगदान रहता है. बिकॉज हमारा आंकड़े जो हैं बहुत वॉल्यूम रहता है, टेराबाइट्स में रहता है. ये टेराबाइट्स का बाइट के देखने के लिए ह्यूमन नॉट पॉसिबल. सो अभी हम इसरो यूज कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, बहुत ही हमको भी यूजफुल हो रहा है. अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्वांटम कम्युनिकेशन, ये सब साथ साथ में.
1: शांति जी, भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है. आने वाले वर्षों में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को और अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर और विश्व स्तरीय बनाने के लिए किन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष स्थान देने की आवश्यकता है?
0: भारत की अंतरिक्ष यात्रा ने हमें ये सिखाया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद, हम पहले भी बता चुके हैं, हम लेट शुरुआत की है 1963 में प्रोग्राम, तब तक कुछ कंट्रीज कुछ देश आगे बढ़ चुके हैं.
1: बिल्कुल,
0: फिर भी हमारे पास सीमित संसाधन है. सीमित संसाधन के बावजूद भी यदि दृष्टि स्पष्ट हो और वैज्ञानिक सोच मजबूत हो और राष्ट्र का संकल्प दृढ़ हो तो असंभव लगने के पर भी हम संभव कर सकते हैं.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: सो हमारे युवा पीढ़ी ये मैसेज लेके भारत की अंतरिक्ष तकनीकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बहुत ही आगे लेके जाने के लिए मेरी आशा है.
1: बहुत अच्छा कहा आपने.

श्रोताओं, ये था आज का हिंदी कार्यक्रम जिसमें हमने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती यात्रा और वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की दिशा में उसके प्रयासों पर चर्चा की। आपने सुनी शांति श्री जी के साथ एक विशेष बातचीत, जिनसे बातचीत कर रहे थे जयदीप। मित्रों, भारत की अंतरिक्ष यात्रा केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों की कहानी नहीं बल्कि नए अवसरों, नवाचार और युवा प्रतिभा की भी कहानी है। इसी संदेश के साथ आज का विशेष कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले हिंदी कार्यक्रम में एक नए विषय, नए विचारों और नए उत्साह के साथ इसी तरंग पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद। नमस्कार।

0: केरला माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और क्राइकल में कहीं कहीं तेज बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की है। यमन के हुक्काम ने सना और सादा में हौसियों के कब्जे वाले इलाकों पर हमलों की तस्दीक की है। हौसियों ने रियाज में आराम को मरकज को निशाना बनाते हुए मिजाइल और ड्रोन हमला करने का दावा किया है। और 2026 के एशियाई खेल आज जापान के नागोया में इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। भारत सोने के 21 तमगों समेत मजमुई तौर पर 85 तमगे जीत कर चौथे मुकाम पर रहा। अब खबरें तफसील से। नायब सदर जम्हूरिया सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि विकसित भारत का सफर मुल्क के इदारों, छोटे, बहुत छोटे और दरमियाना दर्जे के कारोबारी इदारों, निजी स्टार्टअप इदारों की कुव्वत पर आगे बढ़ेगा। वो आज नई दिल्ली में भारत के कंपनी सेक्रेटरियों के इंस्टीट्यूट ICSI के 58वें यौमे तासीस की तकरीब से खिताब कर रहे थे। जनाब राधा कृष्णन ने जोर देकर कहा कि मुल्क सरमायाकारों का भरोसा और एतमाद हासिल किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। नायब सदर जम्हूरिया ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली मईशतों में से एक है, साथ ही वो तेज रफ्तार तकनीकी पेशरफ्त और तरक्की के दौर में भी दाखिल हो रहा है। भारत के कंपनी सेक्रेटरियों के इंस्टीट्यूट ICSI का तस्करा करते हुए जनाब राधा कृष्णन ने मुल्क में अच्छे कारपोरेट इंतजामिया के फरोग में इंस्टीट्यूट के अहम रोल की सताइश की और इसे पायदार तरक्की के लिए आलमी पैमाना करार दिया।
1: Today, as a global benchmark for sustainable development, the ICSI ensures that the modern company secretary fosters robust corporate transparency and serves as the backbone of investor confidence in the Indian market.
0: उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की कि मजबूत आत्मनिर्भर भारत की तामीर में ICSI की इज्तिमाई कोशिशों की बदौलत मुल्क एक दिन दुनिया की वाहिद सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। मगरबी बंगाल में नंदीग्राम और रेजी नगर असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। वहां मंगल के रोज वोटिंग होगी। इन दोनों हलकों में मरकजी फोर्सेज पहुंच रही हैं। इधर पुलिस और सेंट्रल फोर्स के अहलकारों ने पोलिंग से कबल सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की खातिर मुख्तलिफ गांवों में रूट मार्च शुरू कर दिया है। अपग्रेड किए गए ITIs के जरिए प्रधानमंत्री हुनरमंदी और रोजगार के मौके फराहम करने वाली स्कीम PM सेतु का आज एक साल मुकम्मल हो गया है। हुनरमंदी की तरक्की और सनतकारी की वजारत की स्कीम PM सेतु का आगाज पिछले बरस 4 अक्टूबर को किया गया था। इस स्कीम का मकसद सनत पर मबनी हुक्मरानी को मजबूत करना, तरबियत से मुतालिक बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना और उभरती हुई अफरादी कुव्वत की मांग के मुताबिक कोर्सेज को फरोग देना शामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अजीम इनकलाब पसंद रहनुमा और मुजाहिद आजादी श्यामजी कृष्ण वर्मा के योम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपनी पूरी जिंदगी भारत की आजादी के लिए वक्फ कर दी थी। वजीर आजम ने यह भी कहा कि मुल्क के अवाम उनकी दिलेरी और मादरे वतन के वकार के तहफ्फुज़ के तई उनके पुख्ता अज़्म को हमेशा याद रखेंगे। दिल्ली पुलिस ने 3 खातून सहाफियों की जानिब से पुलिस अहलकारों के खिलाफ मुबैना तौर पर जिंसी एतबार से हरासा किए जाने की शिकायतों का मामला मुनसिफाना और गैर जानबदाराना इंक्वायरी की खातिर क्राइम ब्रांच के सुपुर्द कर दिया है। ये मुबैना वाकयात नई दिल्ली के इलाके में कल एहतजाज के दौरान पेश आए थे। उस वक्त पुलिस अहलकारों को अमन कानून बरकरार रखने के लिए तैनात किया गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मजीद तहकीकात के लिए ये शिकायतें क्राइम ब्रांच को मुंतकिल कर दी गई हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और क्राइकल में कहीं कहीं तेज बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की है। इधर अगले 2 दिन के दौरान मराठवाड़ा और विदर्भ के बकिया हिस्सों, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कुछ और हिस्सों, नीज शुमाली कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों से जुनूब मगरबी मानसून के मजीद पीछे हटने का इम्कान है। یمن کی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ یمن میں اہم محاذوں پر حوثی لڑاکوں کو کافی نقصان پہنچا ہے. ادھر سعودی عرب نے حوثیوں کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ سعودی شہر ریاض کو میزائل اور ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا. میڈیا اطلاعات کے مطابق یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ سرکار کی مسلح افواج نے

0: कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के दौर में भी प्रवेश कर रहा है।
1: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I am sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
0: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। पीएम सेतु योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना मजबूत हुई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस योजना का उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। योजना के तहत आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़, राज्य सरकार 20,000 करोड़ और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा। देश में सरकारी और निजी आईटीआई की संख्या 2014 में 9,000 से अधिक थी, जो 2026 में बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो गई है। पीएम सेतु योजना के तहत अब तक 850 आईटीआई को चुना गया है। इनमें 172 हब आईटीआई और 678 स्पोक आईटीआई शामिल हैं। योजना के तहत 200 आईटीआई क्लस्टर में इसे देश भर में लागू करने की मंजूरी दी गई है। 14 आईटीआई क्लस्टर के लिए 3,446 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजना को मंजूरी मिल चुकी है। आनंद और ऋषु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज की विशेष श्रृंखला में असम में गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की जानकारी दी जा रही है। इस हवाई अड्डे के कारण अब पूर्वोत्तर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार बन गया है।
3: असम का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक क्षेत्रीय ट्रांजिट केंद्र से विकसित होकर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित हो गया है, जो पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को नई गति दे रहा है। प्रकृति से प्रेरित नए एकीकृत टर्मिनल 2 पर केंद्रित इस विशाल विस्तार परियोजना को केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को इस अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया था और 22 फरवरी 2026 को इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ। नई सुविधा के साथ हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता बढ़कर 1,30,00,000 से अधिक हो गई है। टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस प्रकार का बुनियादी ढांचा और अन्य विकास परियोजनाएं युवाओं के लिए एक नए अवसर सृजित करती है।
4: इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का बहुत बड़ा संदेश भारत की विकास यात्रा की पहचान बन रहा है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, निवेशकों को कनेक्टिविटी का भरोसा मिलता है, लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का रास्ता खुलता है और सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं।
3: दक्षिण पूर्व एशिया के रणनीतिक संपर्क बिंदु पर स्थित यह उन्नत हवाई अड्डा बैंकॉक, पारो और सिंगापुर जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सुगम हवाई संपर्क प्रदान कर रहा है, जिससे असम भारत के पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त बना रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।

0: समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमरीका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में दो नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों को छोड़ा। श्री यादव ने कहा कि ये उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की एक दशक की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पक्षियों को जंगल में छोड़ने से इनके संरक्षण में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए IIT के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन IIT आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन IIT वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और IIT के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में दो दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी पर चुप्पी साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि पूरा राष्ट्र कैप्टन स्मिथ के असाधारण साहस से गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि जहां कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की भारत और विश्व में प्रशंसा हो रही है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व इस उपलब्धि पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपना वोट बैंक खोने के डर से मौन है। दिल्ली पुलिस ने तीन महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। यमन की सेना ने देश के कुछ प्रमुख मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब ने हूतियों के रियाद में मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा खारिज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है।
2: हूती विद्रोहियों के दियाहत पर हमले के दावे को सऊदी अरब ने खारिज कर दिया है। सऊदी पक्ष ने कहा है कि यमन में मिली हार के चलते हूती एक इल्यूजरी विक्ट्री का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हूतियों ने दावा किया था कि उन्होंने रियाद के पास अरामको की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया और उनके मिसाइल और ड्रोन हमले टारगेट पर भी लगे। वही यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी आर्म फोर्सेस ने तईज और तूर अलबहा में हूती ठिकानों के खिलाफ 97 ऑपरेशंस किए। इन ऑपरेशंस में 260 हूती लड़ाकों को न्यूट्रलाइज करने और 44 मिलिट्री व्हीकल्स और सप्लाई एसेट्स को नष्ट करने का दावा किया गया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा कि ताइज में हुए नुकसान के बीच हूती समूह अपनी जीत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह हूतियों की अपने नुकसान से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अमरीकी तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि बरमूडा से बोस्टन जा रहे लापता चिकित्सा विमान का मलबा नेटकट तट के पास मिल गया है। इस विमान में कनाडा के 4 और बरमूडा के 2 नागरिक सवार थे जिनकी तलाश की जा रही थी। कनाडा के परिवहन मंत्री स्टीवन मैकिनॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। जापान के नागोया में एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। समापन समारोह कुछ ही देर में 2:30 बजे शुरू होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि महिला निशानेबाज नीरू ढांडा भारत की ध्वजवाहक होंगी।

0: एशियाई खेलों में भारत शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई भी कर लिया है। कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रच दिया। गोल्फ में प्रणवी उर्स एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक हासिल किया। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। जबकि कुमकुम मोहत व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी। तीरंदाजी में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते। समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ क्षेत्रों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वायुसेना ने आज कई शहरों में सैकड़ों भारतीय वायुसेना मैराथन आयोजित की। इनमें दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली में दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर वाइस मार्शल शेखर यादव ने संवाददाताओं से कहा कि मैराथन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैकड़ों की स्मृति में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैकड़ों ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी हैदराबाद केंद्र।

0: जोने किया। आज मुनाकदा कॉन्फ्रेंस में डिजिटल शवाहित बच्चों के लिए साजगार इंसाफ और साइबर जिनसी जराइम का शिकार होने वाले बच्चों के लिए कानूनी चाराजुई जैसे मौजूद पर भी तबादला ख्याल किया गया। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि गरीबों के मसाइल हल करना हुकूमत का बुनियादी मकसद है। वजीर ने आज खम्मम में 216 मुस्तहकीन में 1,02,51,000 रुपये मालियती चेक तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुसीबत में मुब्तला हर गरीब खानदान के साथ हुकूमत मजबूती से खड़ी रहेगी। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटियां कायम की जाएं तो किसान मजबूत होगा और किसान मजबूत होगा तो मुल्क भी मजबूत होगा। राज्यसभा के रुकन डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि मंशियात से दूर रहने वाली सेहतमंद नौजवान नस्ल ही 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत के हदफ के हुसूल में कलीदी किरदार अदा करेगी। इसी के साथ खबरें खत्म हुई।
1: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
3: There are countries who are emerging.
4: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास में के युग में प्रवेश कर रहा है। नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आज गुंटूर जिले में एक परियोजना का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3,00,000 मकान स्वीकृत किए हैं और चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले 3,00,000 और मकान स्वीकृत करेगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार आगे के आवंटन पर विचार किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। समाधान की सफलता दर 71.79% है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर

भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से निर्देश दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों की मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: మీరు ఇంతవరకు సినీ గీతాలను ఆస్వాదించారు. ఆకాశవాణి సమయం 8:45 కావస్తోంది. మరికొద్దిసేపట్లో సమాచార సంధ్య ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సే సమాచార సంధ్య కి సాత్ మై జయా భారతి. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले. उन्होंने शांति आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया. ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रूपए की लागत से बने 3,00,000 मकान सौंपे. उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला रखी. तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को. ईरान ने कहा, अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा, हुर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा. ईरान की मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की भी योजना. और जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न.

0: भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 घरों का निर्माण किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार राज्य भर में विकास को गति देने और इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है।
3: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3,00,000 मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
0: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों का असर अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रहा है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वित्तीय शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र में सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि दिवालियापन और दिवालिया संहिता, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और रचनात्मक नियामक निगरानी जैसे सुधारों से भारत का वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकास का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है।
4: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile 5 economy, we become the 4th largest economy and I am sure soon we are going to be the 3rd largest economy of the world.
0: नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्र

0: धैर्यवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैन परंपरा में क्षमा को आध्यात्मिक अनुशासन में परिवर्तित किया जाता है, जो आज समूची मानवता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थन्नट चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे 3 नए आपराधिक कानूनों के जरिए न्याय को आसान और सुलभ बनाया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं।
2: नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत 0 FIR, त्वरित जांच, सीमित स्थगन, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह और वीडियोग्राफी तथा लैंगिक रूप से तटस्थ अपराध जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले FIR करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब 0 FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है।
2: संगठित अपराध से निपटने और महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। पहली बार भीड़ द्वारा हत्या को धारा 103 की उपधारा 2 के तहत एक अलग अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि 5 या उससे अधिक लोगों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करता है, तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के साथ साथ जुर्माने की सजा हो सकती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा,
4: 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही EFIR, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
2: पहले 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान था। अब इस प्रावधान में संशोधन किया गया है। वहीं अब 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अपराध के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हुर्मुज जलडमरूमध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2023 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा। खेलों के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा।
1: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देश के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। और जापान में एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says changing global landscape opens new avenues for cooperation among emerging and middle powers, highlights peace, supply chain resilience and connectivity as their key agendas. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan hands over 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh, lays foundation stone for country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology. Campaigning ends for bipolls to 5 assembly seats across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and the Lok Sabha constituency in Assam, voting on Tuesday. Iran says Strait of Hormuz to remain closed until US meets its 7 conditions, plans to expand range of missiles. And Asian Games 2026 draw to a close in Japan in a dazzling ceremony. India sign off in 4th place with 85 medals comprising 21 gold.

0: और इन सबसे बढ़कर ये सुने जाने की कहानी है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष में हम इसी अनकहे संसार में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं।
1: दिल्ली स्थित एक प्राइवेट ओल्ड एज होम से कुछ आवाजें और कुछ आवाजें सुदूर बिहार से।
2: मेरा नाम आशुतोष मुखर्जी, इलाहाबाद से आए हैं। हम इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री में ऑफिसर थे, रिटायर हो गए। म्यूजिक इज माय हॉबी, बोंगो कॉन्गो। हमारा पूरा ऑर्केस्ट्रा था वहाँ। इलाहाबाद में अब कोई है ही नहीं मेरा। हमारे दो डॉटर्स हैं, दोनों ऑस्ट्रेलिया में हैं। लड़कियों की शादी हो गई, वाइफ की डेथ हो गई।
3: माय नेम इज कृष्णा विश्वास। आई यूज्ड टू लिव विद माय डॉटर, बट शी हैज एक्सपायर्ड। आई केम हियर, आई फील वेरी लोनली। जनरली आई लाइक टू वॉच टीवी एंड लाइक टू स्टोरी बुक।
4: मेरा नाम है विजेंद्र सिंह शेखावत, आर्मी से रिटायरमेंट हूँ चौदह से, और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। उनकी देख रेख, जैसे रात बिरात हारी बीमारी होती है, 10 का मेरा स्टाफ है। नहीं ऐसे को नहीं, सभी आते हैं, एक दो दिन तो उनका मन नहीं लगता, फिर यहाँ पर माहौल में डल जाते हैं, सब खुश रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, यहाँ पर टीवी देखते हैं, न्यूज पेपर देखते हैं, यहाँ कीर्तन भाव होते हैं हफ्ता में एक दिन। कॉलेज के स्कूल के स्टूडेंट आते हैं, वहाँ डांस करते हैं, तमल्ला खिलाते हैं, अंताक्षरी करते हैं, गाने सुनाते हैं, तो उनका अच्छा टाइम पास हो जाता।
5: मेरा नाम बेबी सिन्हा है, मैं खगड़िया चित्रकूट नगर डीएवी रोड से हूँ। मैं यहाँ पर अपने लड़का के नाम से स्कूल खोली हुई हूँ। मैं अकेले अपने घर में रहती हूँ, तो स्कूल खोलने का मकसद मेरा यही था कि बच्चे के बीच में रहूंगी, मैं खुश रहूंगी।
6: मेरा नाम श्यामा कांति सिन्हा है, मेरी उम्र 69 बरस है। मैं बिहार शरीफ में रहती हूँ, अपने पति के साथ अकेले। मैं पहले सर्विस करती थी, अब मैं रिटायर हो गई हूँ, अकेले दोनों रहती हूँ। कभी कभी बहुत मुश्किल होती है, गिर जाती हूँ मैं भी, मेरा पति भी। पूरे दिन अकेले काटती हूँ, पेपर पढ़ती हूँ, कभी मोबाइल देखती हूँ। मेरे बच्चे हैं जो दूर में रहती हैं, दो बेटियाँ, उनको आना भी मुश्किल है। मैं सोच के कभी कभी रोना आता है, रोते रहती हूँ।

0: कर गई मैं भुलावे कौबटन हिमल तारा कौन से रास्ते जान किस मोड़ पर कब बिछड़ कर मेरा पाकपन रह गया पत्ते झरने लगे बूढ़ा बरगद हुआ बस गए उम्र का आकलन रह गया पत्ते झरने लगे बूढ़ा बरगद हुआ पत्ते झरने लगे बूढ़ा बरगद हुआ।
1: भारत को लंबे समय तक युवा देश के रूप में देखा गया लेकिन अब भारत की जनसंख्या की तस्वीर बदल रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की एल्डरली इन इंडिया 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी का हिस्सा 2021 में लगभग 10.1% अनुमानित था और 2031 में 13.1% तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था।
2: और इससे आगे की तस्वीर देखें तो UNFPA की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की हिस्सेदारी 2022 के 10.5% से बढ़कर 2050 में 20.8% होने का अनुमान है। यानी आने वाले दशकों में भारत में हर 5 लोगों में लगभग एक व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो सकता है।
1: ये सिर्फ जनसंख्या का बदलाव नहीं है, ये परिवार की संरचना बदलेगा, स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत बदलेगा, सामाजिक सुरक्षा की जरूरत बदलेगा और मानसिक स्वास्थ्य की हमारी समझ को भी बदलना होगा, क्योंकि सवाल ये नहीं कि हम कितने लोगों को लंबी

0: जिंदगी दे पाएंगे। सवाल ये भी है कि क्या हम उस लंबी जिंदगी को अर्थपूर्ण, सम्मानजनक और सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ बना पाएंगे। कई वर्षों तक भारत में और वर्तमान में दोहा कतर में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में सेवाएं दे रहे डॉक्टर नवाब खान कहते हैं,
1: केयर सिस्टम है ना, इंडिया में चेंज हो रहा है। पहले एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, वो अब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में तब्दील हो रहा है। केयर टेकर्स थे पहले के कंपैरिजन में, कम हो रहे हैं एक्चुअली। दूसरा है कि जो चीजें उनके अंदर होती है, एंजाइटी है, जो लोनलीनेस है, जो फॉरगेटफुलनेस है, डिमेंशिया से रिलेटेड चीजें होती है, जो उनका लॉस है, जिसमें लॉस ऑफ पार्टनर है, इस चीजों के लिए। तो बेसिकली होता क्या है कि इंसान जब हार जाता है तो उनका गुस्सा खुद की तरफ होने लगता है, लेकिन जब गुस्सा बाहर की तरफ होता है तो फिर वो फाइट की स्पिरिट में दिखता है कि अपने राइट्स के लिए लड़ना, स्पेस के लिए लड़ना, अपने इमोशनल कनेक्टिविटी के लिए लड़ना, मतलब आई एम समथिंग, ये सेल्फ हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी इसको फैमिली वाले अलग वे में ले लेते हैं कि अच्छा इस उम्र में इतना ईगो दिखा रहे हैं। ये एक ब्लेसिंग है एक्चुअली, जिसको फैमिली वाले को समझना ये चाहिए कि नहीं, स्टिल ही इज हैविंग फाइटिंग स्पिरिट, द लाइफ इज देयर। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप कितने साल तक जीते हैं, इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि इन सालों में जिंदगी कितनी थी, उस जिंदगी को भरने की जरूरत होती है एक्चुअली।
2: पूरी जिंदगी किसी व्यक्ति की पहचान कई भूमिकाओं से बनती है। कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर, किसान, व्यापारी, गृहिणी, माता पिता, फिर एक दिन नौकरी या सेवा समाप्त होती है और उसके साथ सिर्फ वेतन या खुद की भूमिका ही नहीं ठहरती, कभी कभी दिनचर्या भी रुक जाती है। सहकर्मियों से रोज का मिलना रुकता है, निर्णय लेने की आदत बदलती है और व्यक्ति के मन में एक प्रश्न जन्म लेता है, अब मैं कौन हूं?
0: ये प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है। व्यक्ति को अपने जीवन में उद्देश्य, सामाजिक संबंध और अपनी भूमिका का एहसास भी चाहिए।
2: अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना एक ही बात नहीं है। कोई व्यक्ति परिवार के बीच भी रहकर भीतर से बहुत अकेला महसूस कर सकता है और कोई व्यक्ति अकेला रहकर भी अपने जीवन से संतुष्ट हो सकता है।
3: मेरा नाम दशरथ भगत है। मैं प्लस टू विद्यालय स्थानीय खगड़िया स्टेशन रोड से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं अभी अकेले घर में रहता हूँ। मेरी पत्नी शिक्षिका थी, 2013 में एक्सपायर कर गई। तीन बच्ची है, तीनों बच्ची की शादी हो गई है। एक लड़का है, वह बीटेक करके यूपीएससी की तैयारी करता है, लेकिन घर में मैं अकेला रहता हूँ। अकेलापन तो अनुभव होता है, लेकिन साथी लोग हैं, इसलिए हम लोग का समय बड़ी आसानी से कट जाता है। थोड़ा अध्यात्मिक होने के कारण और विभिन्न संस्था से जुड़े रहने के कारण मेरा पर्सनल लाइफ ठीक है। बुनियादी केंद्र में भी हम लोगों का एक मनोरंजन होता है। मैं खुश हूँ अपने लाइफ से।
2: WHO के अनुसार दुनिया में लगभग हर 6 व्यक्ति में एक व्यक्ति लोनलीनेस का अनुभव करता है। वृद्ध लोगों में लगभग 11.8% लोनलीनेस का अनुमान दिया गया है। WHO ये भी रेखांकित करता है कि लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन का संबंध मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, क्वालिटी ऑफ लाइफ और लॉन्गजीविटी से है। और सोशल आइसोलेशन इससे अलग अवधारणा है। यहाँ व्यक्ति के सामाजिक संपर्कों और रिश्तों की संख्या और गुणवत्ता महत्वपूर्ण हो जाती है।
0: कभी कभी कितने लोग हैं ये समस्या नहीं है, बल्कि कितने लोग हैं जिनसे मन की बात की जा सकती है। यही वो जगह है जहाँ मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। डॉक्टर नवाब खान कहते हैं,
1: ये चीज जो स्टडीज से रिफ्लेक्ट हुई है, मैक्सिमम स्ट्रेस अपने पार्टनर के खोने से होता है, बाकी स्ट्रेस सब उसके नीचे आते हैं। इवन अगर जो लोग ओल्ड एज में रहते हैं, उनके दोस्त हैं और उनकी नजरों के सामने अगर कोई जाता है, दे फील वेरी वेरी सैड एंड बैड। अल्टीमेटली उनको ये फील होता है कि मेरा नंबर आ रहा है। जिस वक्त इंसान को ये फीलिंग होने लगे कि मेरा नंबर आ रहा है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है उसके पास, तो इनोवेशन खत्म हो जाते हैं, एक दो जील जो जील की होती है वो खत्म हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। कि हर कम्युनिटी में उम्र के साथ जो स्पेसिफिक चैलेंजेस है वो आते ही आते हैं। गवर्नमेंट

0: बहुत ज्यादा कुछ कर ले, तब भी एक जो कम्युनिटी का रोल होता है, जो एक रिलेटिव्स का रोल होता है, जो एक दोस्तों का रोल होता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: भारत में पारिवारिक संरचना भी बदल रही है, माइग्रेशन बढ़ा है, शहरीकरण बढ़ा है, परिवार छोटे हुए हैं, बच्चे शिक्षा और रोजगार के लिए दूसरे शहरों या दूसरे देशों में चले जाते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ सोशल सपोर्ट की आवश्यकता कम नहीं होती।
2: इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार जब वृद्ध लोग अपने वयस्क बच्चों के साथ नहीं रहते तो लिविंग अरेंजमेंट्स में जेंडर डिफरेंसेस दिखाई देते हैं।
1: यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, उम्र के बहुत आगे के पड़ावों पर विडोहुड और अकेलेपन का जोखिम महिलाओं में अधिक हो सकता है।
2: यूएनएफपीए की रिपोर्ट विशेष रूप से एजिंग के फेमिनाइजेशन की ओर ध्यान दिलाती है, यानी वृद्ध आबादी में महिलाओं का बढ़ता अनुपात और उनके साथ जुड़ी आर्थिक या सामाजिक वल्नरेबिलिटीज।
1: इसीलिए सीनियर सिटीजन्स को एक समान समूह मानकर नहीं देखा जा सकता। एक अकेले रहने वाले पुरुष का अनुभव अलग हो सकता है, महिला का अलग, ग्रामीण बुजुर्ग का अलग, और शहर में अकेले रहने वाले वृद्ध का बिल्कुल ही अलग। और आर्थिक रूप से सुरक्षित व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अनुभव भी आर्थिक रूप से असुरक्षित व्यक्ति से बिल्कुल अलग हो सकता है। लंबे समय से भारत में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर।
3: भारत में बुजुर्गों की मानसिक सेहत और इलाज से जुड़े आंकड़े गंभीर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस यानी IIPS के देश के सबसे बड़े सर्वे जो अब तक हुआ है, लॉन्जिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया यानी लासी LASI की रिपोर्ट के मुताबिक, और आपको बता दूं कि बुजुर्गों की मानसिक सेहत से जुड़े ये आंकड़े मुख्य रूप से लासी वेव वन रिपोर्ट से लिए गए हैं। इन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 6 जनवरी 2021 को जारी किया था। ये आंकड़े देख लेने चाहिए, इससे हमें समस्या कितनी गंभीर है और कितना ज्यादा और काम किया जाना बाकी है इससे पता चलता है। तो आंकड़े इस तरह हैं कि भारत में लगभग 20% वरिष्ठ नागरिक 60 साल से जिनकी उम्र ज्यादा हो किसी न किसी तरह की मानसिक स्वास्थ्य समस्या या मनोरोग से जूझ रहे हैं। डिप्रेशन यानी अवसाद बुजुर्गों में ये आम समस्या हो गई है। आंकड़े देखें तो लगभग 41.7% बुजुर्गों ने किसी न किसी स्तर पर डिप्रेशन के लक्षणों की शिकायत की है, ये रिकॉर्ड में है। इसके अलावा डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी, भारत में 60 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 7.4 बुजुर्ग, ये संख्या बैठती है लगभग 88 लाख। अब महिलाओं में ये खतरा ज्यादा रहता है, बुजुर्ग पुरुषों के मुकाबले बुजुर्ग महिलाओं में मानसिक तनाव और डिप्रेशन की दर ज्यादा देखी गई है। इसकी जो खास वजह है वो एकाकीपन और आर्थिक निर्भरता है। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों के बुजुर्गों में अवसाद के लक्षण ज्यादा पाए गए हैं, क्योंकि वहां मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अभी अपेक्षा के हिसाब से कम है।
1: LASI के विश्लेषण में 75 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में प्रोबेबल मेजर डिप्रेशन की प्रेविलेंस 9.4% तक दर्ज हुई। 60 से 64 वर्ष में ये 8.3% थी।
2: एक और महत्वपूर्ण अंतर सामने आता है, LASI में सिम्टम बेस्ड असेसमेंट से डिप्रेशन का स्तर सेल्फ रिपोर्टेड डायग्नोसिस की तुलना में कहीं अधिक पाया गया। इन दोनों आंकड़ों के बीच का अंतर हमें एक महत्वपूर्ण सवाल देता है, क्या मानसिक स्वास्थ्य की समस्या कम है या हम उसे पहचान कम रहे हैं? यही इस कार्यक्रम की केंद्रीय चिंता भी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य की समस्या को बीमारी मानकर ही नहीं देखता तो वो मदद लेने कैसे जाएगा?
1: और अगर परिवार हर उदासी को उम्र का असर है कहकर टाल देता है तो पहचान और उपचार की संभावना और कम हो जाती है। रवि पाराशर।
3: भारत में लगभग 8% बुजुर्ग ऐसे हैं जो गंभीर डिप्रेशन से पीड़ित हैं, लेकिन उन्हें खुद इस बीमारी की जानकारी नहीं है, ये भी एक गंभीर बात है। इसकी जो खास वजह है वो सामाजिक संकोच है, वो ये बताना नहीं चाहते दूसरों को, अपने बच्चों को, अपने मित्रों

0: को कि वे उन्हें कोई मानसिक समस्या है। एक और बड़ी वजह रिपोर्ट में पाई गई है कि मानसिक सेहत की जांच करने वाले और इलाज करने वाले डॉक्टरों की अभी कमी है, तो इस दिशा में सरकार काम कर रही है और लगातार काम जारी रहेगा, ऐसा मुझे अपने अनुभव के आधार पर लगता है।
1: बढ़ने के साथ मानसिक स्वास्थ्य को केवल मानसिक बीमारी के संदर्भ में देखना भी अधूरा होगा। उम्र के साथ साथ फिजिकल लिमिटेशंस भी बढ़ती हैं। 60 प्लस के लोगों में लगभग 23.8% को कम से कम एक एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में लिमिटेशन और लगभग 48% को इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में कम से कम एक लिमिटेशन दर्ज की गई है।
2: अब जरा इसे एम्फैटिकली यानी मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझते हैं। जब किसी व्यक्ति को रोजमर्रा के कामों के लिए दूसरे की मदद चाहिए, जब चलने फिरने की स्वतंत्रता कम हो, जब सुनने या देखने में कठिनाई हो, जब दर्द लगातार साथ हो, तो सिर्फ शरीर नहीं बदलता, व्यक्ति की ऑटोनॉमी, कॉन्फिडेंस और सोशल पार्टिसिपेशन भी प्रभावित हो सकती है। इसीलिए वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर बात करते हुए फिजिकल हेल्थ, डिसेबिलिटी और फंक्शनल इंडिपेंडेंस को अलग नहीं किया जा सकता। डॉक्टर नवाब खान।
3: बुजुर्गों में एक उम्र के बाद सुनने की जो ताकत होती है थोड़ी कम हो जाती है, कभी कभी विजन पे असर हो जाता है, और आप हम लोग ये सब जानते हैं कि उम्र के साथ मेमोरी पे भी असर पड़ता है। सब पे ना हो, लेकिन एक मेजर पॉपुलेशन पे ऐसा काम होता है। जब आपके सुनने की, देखने की, याद करने की क्षमता में कुछ चेंजेस हो जाए, तो फिर ट्रस्ट का इश्यू आता है कि किस पे ट्रस्ट करें। कभी कभी आपकी मेमोरी आपका साथ नहीं दे रही होती, तो मेमोरी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो अगर आपने खाना खा लिया है या नाश्ता कर लिया है, तो फिर आपको याद भी नहीं है। तो उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, प्रॉपर चैट की जरूरत होती है, तो प्रॉपर टीम की जरूरत होती है। और इस हालत में बुजुर्गों को खुद अपनी मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी होती है। जैसे कुछ चीजें आप रखिए फिर भूल जाते हैं, या किसी ने कुछ बात कही तो हमको शक हो, ऐसे शायद ये मेरे बारे में बोल रहा है। दे स्टार्ट ओवर हियरिंग एवरीथिंग, दे स्टार्ट रेफरिंग देमसेल्फ फॉर एवरीथिंग, जो पेनफुल हो जाता है बात। और ये जेंडर से एक्चुअली चेंज नहीं होता है, दोनों जेंडर के लिए इक्वली चीजें एप्लीकेबल होती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये बेसिकली आपके कॉग्निशन मतलब थिंकिंग पैटर्न, उससे रिलेटेड इमोशन और उससे रिलेटेड बिहेवियर, इन तीनों चीजों को एक लॉजिकल वे में रिस्ट्रक्चर करने का तरीका है। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर हैं, इस जगह पे हैं, तो ठीक है, तो मे बी ऐसी ही मेरी जिंदगी थी और ऐसा ही होना था, इसलिए हो रहा है ये। तो इसलिए स्टार्ट ब्लेमिंग आवरसेल्फ, एक्चुअली हम ही इसको फेथ को ओन करते हैं, इस प्रॉब्लम्स को हम ही ओन करते हैं और हमको ये करना ही होगा, बट सिचुएशन कुछ भी और हो सकती है। तो ये जो कॉग्निटिव एरर्स हो जाते हैं उसको एक जेंटली मोर लॉजिकली चैलेंज करके रिस्ट्रक्चर करने का तरीका है। लेकिन इसका इस्तेमाल तब होता है जब पेशेंट या पर्सन जो है, बोले आप, या ओल्ड एज में जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनके अंदर लॉजिकल एबिलिटी हो समझने के लिए कि इसका ये अल्टरनेटिव कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है, इसका ये अल्टरनेटिव कॉज भी हो सकता है।
1: मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा में एक और पक्ष अक्सर पीछे छूट जाता है, वो है आर्थिक सुरक्षा।
2: अब जरा सोचिए, अगर उम्र बढ़ने के साथ आय का स्रोत समाप्त हो जाए, स्वास्थ्य खर्च बढ़ जाए, दवाइयां नियमित रूप से लेनी पड़े और व्यक्ति आर्थिक रूप से पूरी तरह परिवार के सदस्यों पर निर्भर हो जाए, तो आर्थिक चिंता और मानसिक तनाव के बीच दूरी कितनी रह जाती है।
1: इसीलिए वृद्धावस्था का मानसिक स्वास्थ्य केवल काउंसलिंग का विषय नहीं, ये सोशल सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी, हेल्थ केयर और डिग्निटी का भी विषय है। यानी समाधान केवल ये नहीं कि बच्चे अपने माता पिता से फोन पर बात करें, जरूरत इससे बड़ी है कि ऐसे मोहल्ले हों जहां बुजुर्ग सुरक्षित होकर निकल सके, ऐसे पार्क हों जहां बैठने की जगह हो, ऐसी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था हो जिसका उपयोग वृद्ध आसानी से कर सके,
2: ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स हों जहां वे केवल लाभार्थी नहीं सहभागी हों, और ऐसी सामाजिक गतिविधियां हों जिनमें उम्र बाधा न बने, क्योंकि किसी व्यक्ति के सामाजिक रिश्ते उसकी मानसिक सेहत का हिस्सा हैं।
1: एक सवाल और है, मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य को केवल बीमारी के उपचार के रूप में देखा जाए या उसमें सोशल पार्टिसिपेशन, लोनलीनेस प्रिवेंशन, कम्युनिटी सपोर्ट।

0: काउंसलिंग, ऑटोनॉमी और डिग्निटी जैसे विषयों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि अगर अकेलापन मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है तो लोनलीनेस प्रिवेंशन भी पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन का एक हिस्सा होना चाहिए।
1: और अगर रिटायरमेंट आइडेंटिटी को बदलना है तो मीनिंगफुल एंगेजमेंट भी एजिंग पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी कई सरकारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। लंबे समय से भारत में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर।
2: सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि सरकारी योजनाओं का फायदा सभी बुजुर्गों को मिलना चाहिए, चाहे वो ग्रामीण इलाकों में रह रहे हों, चाहे वो शहरी इलाकों में रह रहे हों, चाहे वो वृद्धाश्रमों में रह रहे हों। और इसके लिए ग्रामीण इलाकों में मुझे लगता है कि वहां के जो प्रधान होते हैं और सरपंचों को, उनको जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, इनसे सीधे जोड़ा जाना चाहिए। और शहरी इलाकों में जो सबसे निचली इकाई है, मोहल्लों के वार्डों के जो पार्षद हैं, उनके जिम्मे ये काम किया जाना चाहिए, अनिवार्य कर देना चाहिए बल्कि। और कुछ सरकारी योजनाओं का जिक्र यहाँ करना सही रहेगा। आयुष्मान भारत योजना, ये योजना ऐसी है कि 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को, देश भर के सभी बुजुर्गों को इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज मिलता है, जिसमें मानसिक समस्याओं का इलाज भी शामिल है। दूसरी योजना है टेली मानस, ये मानसिक सेहत से जुड़े परामर्श के लिए, सलाह मशवरे के लिए सरकार की 24 घंटे सातों दिन चलने वाली हेल्पलाइन सेवा है। ये बुजुर्ग इस पर कॉल करके मुफ्त मानसिक सलाह ले सकते हैं। इसके नंबर दो हैं, एक है 14416 और दूसरा नंबर है 1800-89-14416। और अच्छी बात यह है कि ये सेवा जो है वो हिंदी समेत कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, तो इसका लाभ उठाया जा सकता है। बिना संकोच किए आप फोन घुमाइए, अगर दूसरों को नहीं बताना चाहते, अकेले में सलाह लेना चाहते हैं, अपनी मानसिक सेहत से जुड़ी समस्या का निराकरण चाहते हैं, तो फोन पर बात कर सकते हैं। एक और नंबर है जिसको एल्डर लाइन कहा जाता है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन, वो है 14567। ये आसानी से याद भी किया जा सकता है, 14567। इस पर कॉल करके बुजुर्गों को न केवल मानसिक मदद मिलती है, मानसिक समस्याओं से जूझने में मदद मिलती है, बल्कि पेंशन, कानूनी विवाद और पारिवारिक समस्याओं में भी ये यहाँ पर सलाह मशविरा और सही मार्गदर्शन दिया जाता है। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र भी सरकार ने जगह जगह स्थापित किए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर बुजुर्गों को बुनियादी सलाह मशविरा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए दवाएं यहाँ इसके माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP और जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम DMHP, इसके तहत जिलों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और परामर्श दिया जाता है। वयोवृद्ध जन कल्याण योजनाएं भी हैं, सरकार चलाती है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इन्हें चलाता है। इसके तहत डे केयर सेंटर, आश्रय और मोबाइल मेडिकल यूनिट जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं, अगर घर पर आपको परामर्श चाहिए। और अच्छी बात यह है कि ये सभी हेल्पलाइन सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त हैं और 24 घंटे उपलब्ध हैं। ये जानकारी भी होनी चाहिए कि भारत में मानसिक बीमारी के इलाज और अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 में एक कानून बनाया गया था, और आयुष्मान भारत यानी पीएम जय के नियमों के तहत बेहद सुगम और मरीज के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए तैयार किया गया है।
0: आंकड़े जरूरी हैं, वो हमें समस्या का आकार बताते हैं, लेकिन आंकड़े ये नहीं बताते कि किसी शाम अकेले कमरे में बैठना कैसा लगता है, पति या पत्नी की मृत्यु के बाद पहली रात कैसी होती है, रिटायरमेंट के बाद सोमवार और रविवार में फर्क क्यों मिट जाता है, या जब परिवार कहता है आप आराम कीजिए तो कभी कभी उस वाक्य के पीछे छुपा संदेश कैसा महसूस हो सकता है।
1: इसीलिए इस वर्ष की थीम लिव्ड एक्सपीरियंसेस हर्ड, रियल वॉइसेस, रियल चेंज एक महत्वपूर्ण दिशा देती है। सिर्फ लोगों के बारे में बात मत कीजिए, लोगों को बोलने की जगह दीजिए। मन के मौसम बदले जा सकते हैं, उम्र बढ़ना एक बायोलॉजिकल रियलिटी है, लेकिन अकेलापन हमेशा अनिवार्य नहीं।
0: शायद उम्र का सबसे कठिन मौसम वो नहीं होता जब शरीर कमजोर पड़ने लगता है, सबसे कठिन मौसम वो होता है जब व्यक्ति को लगे कि उसकी जरूरत कम

0: हो गई है। जब बातचीत उसके बारे में होती है लेकिन उससे नहीं, जब उसके लिए फैसले लिए जाते हैं लेकिन उसकी राय नहीं पूछी जाती, जब उसके पास घर होता है लेकिन संवाद के लिए कोई नहीं, जब उसके पास परिवार होता है लेकिन अपनापन नहीं, और जब उसके भीतर बहुत कुछ कहने को होता है सुनने वाला कोई नहीं।
1: हमारे पास आंकड़े हैं और आंकड़े हमें बताते हैं कि भारत तेजी से एजिंग सोसाइटी बन रहा है। वे बताते हैं कि डिप्रेशन, सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस वास्तविक और गंभीर चिंताएं हैं।
0: लेकिन एक आंकड़ा कभी किसी व्यक्ति की पूरी कहानी नहीं होता, इसलिए शायद अब समय है कि हम सवाल बदलें। ये पूछने के बजाय कि आपको क्या परेशानी है, कभी पूछें आप इन दिनों क्या महसूस कर रहे हैं।
1: ये पूछने की बजाय आपको किस चीज की जरूरत है, कभी पूछें आप अभी भी क्या करना चाहते हैं।
0: और ये मान लेने के बजाय कि उम्र के साथ मन के रंग फीके पड़ जाते हैं, उसे फिर से रंगने के लिए एक जगह बनाते हैं, क्योंकि मन भी मौसम की तरह है, उसमें पतझड़ आता है तो वसंत भी आ सकता है, कभी बादल घिरते हैं तो धूप भी लौटती है।
1: जरूरत सिर्फ इतनी है कि खिड़कियां बंद न कर दी जाएं, किसी के मन की खिड़की खुली रहे, कोई वहां से आती आवाज तो सुन सके, रुके, बात करे और कहे कि हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ।
0: क्योंकि शायद मानसिक स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी सुना जाना है। किसी उम्र में जीवन समाप्त नहीं होता, हर उम्र में एक नया मौसम आने की गुंजाइश हमेशा रहती है।
1: और ये नया मौसम हर किसी के जीवन में आए, ऐसी हमारी कामना है।
2: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित रूपक मन के मौसम उम्र के साथ। आलेख डॉक्टर बानी आनंद, वाचन स्वर हर्ष रंजन, नवोदिता मिश्रा, रमेश शर्मा की गीत पंक्तियों को स्वर दिया ओम प्रकाश मिश्र ने, प्रस्तुति सहयोग हरदीप सिंह और सुमन ठाकुर, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।
4: आज के इस सभा में प्रस्तुत है हिंडोल पेंडसे का शास्त्रीय गायन।
5: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी नाउ ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय हिंडोल पेंडसे।
4: श्री हिंडोल पेंडसे का जन्म सांगीतिक परिवार में हुआ। उन्होंने शास्त्रीय गायन की शिक्षा घर के संगीतमय वातावरण में अपने पिता एवं गुरु श्री सदानंद पेंडसे से प्राप्त की। आपके गायन की विशेषता राग की सिलसिलेवार सौंदर्यपूर्ण एवं लय के साथ खूबसूरत बढ़त है। इसके अलावा आप सुगम गायन जैसे भावगीत, भक्ति गीत, नाट्य गीत में भी निपुण है। आपने अनेक फिल्मों, धारावाहिकों एवं महानाट्यों में गायन और पार्श्व संगीत का सृजन किया है। आपने देश के अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोह में अपना सफल गायन प्रस्तुत किया है। आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। श्री हिंडोल पेंड से अपने कार्यक्रम का आरंभ राग बिहाग से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल है कवन ढंग तोरा। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल है बाजे रे मोरी पायल। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अजिंक्य गलांडे तथा हारमोनियम पर नारायण दरेकर। लीजिए सुनते हैं राग बिहाग। कलाकार है हिंडोल पेंडसे।
5: हिंडोल पेंडसे बोर्न इन अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, ही हैड हिज म्यूजिकल ट्रेनिंग इन रिच म्यूजिकल एनवायरमेंट एट होम फ्रॉम हिज फादर एंड गुरु श्री सदानंद पेंडसे। हिज सिंगिंग

0: अभी आप राग बिहाग सुन रहे थे। कार्यक्रम का समापन श्री हिंडोल पेंट से राग मधु कौन से कर रहे हैं। मध्य लय ख्याल झपताल में निबद्ध है, बोल है देहो दरस मोहराम, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल है आजा रे आजा पथिकवा।
1: दैट वॉज राग बिहाग। हिंडोल पेंट से कंक्लूड हिज वोकल रिसाइटल विथ राग मधुकौंस। मध्यलय ख्याल देहो दरस मोहे राम,

0: ये था राग मधुकौंस। इसी के साथ ही आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम समाप्त होता है, जिसमें आपने श्री हिंडोल पेंसे का शास्त्रीय गायन सुना। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री अजिंक्य गलांडे और हारमोनियम पर श्री नारायण दरेकर। आकाशवाणी के नागपुर स्टूडियो में ध्वनि मुद्रित ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: That was Rag Madhukons. With this, tonight's Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha comes to an end. You have been listening to the classical vocal recital by Sri Hindol Pense. He was accompanied on tabla by Ajinkya Galande and on harmonium by Narayan Darekar. This program was recorded in the studio of Akashwani Nagpur and broadcast came to you from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा हैं। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोवियत संघ कई मौकों पर भारत के साथ खड़ा रहा, खासकर तब जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में आयोजित 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश की सैन्य तानाशाही के समर्थन में थे, तब रूस एक ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज दोनों देशों के रिश्ते पहले से ज्यादा व्यापक हो गए हैं। इसमें सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष से जुड़े पहलुओं के साथ साथ व्यापार और निवेश भी शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है कि वह इस संघर्ष का अंत देखना चाहता है। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने काला सागर में जहाजों और वाणिज्यिक जहाजरानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मुद्दे से इस

0: मदद की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत के 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कहा है कि पायलट स्मित मछार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं जारी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राजदूत मित्तल ने बताया कि स्मित तेजी से ठीक हो रहे हैं और उनका मनोबल काफी ऊंचा है। उन्होंने कहा कि दूतावास स्थानीय अधिकारियों और परिवार के साथ संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के समापन के अवसर पर भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य को देश का दृढ़ संकल्प, जुनून और शानदार खेल भावना के साथ प्रतिनिधित्व करने के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jaishankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today. He said the world, its agenda and its geopolitical landscape are all undergoing significant changes, creating substantial scope for cooperation among emerging and middle powers. He said it is marked by the repositioning of the United States, the rise of China and growing global interdependence.
2: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing. And I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
1: The minister also emphasized that Russia is a country that stood by India in many ways when India's security and territorial integrity was under threat. He stressed that at a time when much of the world preferred backing a military regime next to India, Russia was a country with which India's relations were very good. Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan today handed over the first installment of 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh under the Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen 2.0 at an event in Guntur district. Mr. Chauhan also laid the foundation stone for the country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology, comprising 177 houses at a cost of 14 crore rupees. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu was present on the occasion. Campaigning ended today for by-elections to 5 assembly constituencies across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha constituency in Assam. Polling for the 6 seats will be held on Tuesday, while counting of votes will take place on Friday. The assembly constituencies going to polls are Madurandagam and Tharapuram in Tamil Nadu, Tattanchavadi in Puducherry and Rijinagar and Nandigram in West Bengal. In Assam, voting will be held for the Nagaon Lok Sabha constituency. The assembly seats fell vacant following the resignation of the sitting legislator.